रेडियो एक सौ समय गहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.radiodhading.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:45 बजे को खबर में ब्रेक को नमस्कार खबर को सुरमा मुख्य मुख्य

0: वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को और को परिभाषा।
1: अब ब्रेक को साथ में
2: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाड़ो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

0: रहिर ओरिजिनल तथा ब्रान्डेड मोबाइल सस्तो मूल्यमा छानी छानी किन्नलाई त्रिमूर्ति मोबाइल हाउसतिर।
1: हामी कहाँ सामसुङ, ओप्पो, भिभो, सिजी, इन्टेक्स, एमआई, मैजु, कलर्स, लाभा, एमटेक, टेक्नो, आइटेल ब्रान्डका मोबाइलहरू, घडी, साउन्ड सिस्टम, डिसोम, पंखा तथा सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाइनुका साथै पुरानो मोबाइल लिएर नयाँ मोबाइल पनि साटिन्छ।
2: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिङ बेसी मिलन टोल लेकाली टिकट काउन्टर सँगै प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98140063130 र 98131803007।

0: को वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा।
2: अब ब्रेक को साथ में
3: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै शिर ठाड़ो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

दिल को चुमके हो रहा तारा ओय ओय ओय गुल्ली हंदा इम्रो या जन्मा दिल को चुमके हो रहा।

राष्ट्रपति तीनवटा केन्द्रीय आयोग में पदाधिकारी मनोनयन देश का धेरे जस में वर्षा भूमि पर पानी पर्ने बेलुकी 38 बजे खबर लिएर आउँछु। प्राविधिक मित्र विकललाई धन्यवाद दिदै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म बिदा हुन्छु। नमस्कार।